0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी।

0: चक्कर से आ गए बेटे।
1: बेटे को ढूंढ रही थी?
0: हाँ।
1: कौन है आपका बेटा? हाँ। क्या नाम है उसका?
0: ये देख बेटे, विशाल नाम है इसका।
1: ये आपका बेटा है?
0: हाँ बेटे।
2: वाह वाह वाह, माँ जी फिर तो गाड़ी देख कर सामने आई हैं आप।
1: अरे माँ जी, यूँ समझिए आपका बेटा मिल गया।
0: हाँ
1: प्यारा जी, आप माँ जी को लेकर घर चलिए, मैं अभी अभी वकील बाबू को लेकर आता हूँ।
2: आइए
1: चलिए, चलिए माँ जी, चलिए
2: आइए,
1: संभाल के ले जाना प्यारा जी।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: सिकंदर गाड़ी से दूर हट जाए, इसमें टाइम बम है।

0: डॉक्टर साहब ये
1: सिकंदर साहब आप यही रहिए, हो सकता है आपके और खून की जरूरत पड़े
0: तो लीजिए। डॉक्टर साहब मेरे खून का एक कतरा ले लीजिए, लेकिन विशाल की जान बचा लीजिए।
1: हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा।
0: मुझे पाल चाहिए, शहर का कोना कोना छान मारो, लेकिन किसी भी हालत पाल को लेकर आओ।
2: अबे बस बस, ज्यादा मत हंस। एक काम तो पूरा हो गया, अभी दूसरा बाकी है। पता है जेडी आने वाला है, सिकंदर ने उसके 15 लाख का माल पकड़वा दिया, इसका उसे क्या जवाब दोगे?
1: सिकंदर,
0: पहले सिकंदर से बच जा, फिर जेडी की सोचना।